0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: स्वाभाविक है, कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।
1: कबीरा

हमारा जीवन आरंभ होता है। और ऐसे समय पर कवि ने एक चेतावनी दी है, एक महान शिक्षा दी है, इसकी ओर ध्यान दें।

ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं, कुछ और रागों की इसमें छाया है, प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो है राग देश।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभातम। यह है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज भोलेनाथ का दिन है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिव केवल संहार के देवता हैं, लेकिन शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, मंगल और शुभ। इसीलिए उनका संहार भी बुराई, अहंकार और अज्ञान का होता है, ताकि नए सृजन का मार्ग खुल सके। आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के इस पावन भजन के साथ।

सुप्रभात, ये मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। भोलेनाथ क्यों कहलाते हैं भोले? भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला। मान्यता है कि वो सच्चे मन से की गई छोटी से छोटी भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव का पावन दिन है, साथ ही बहुत ही जल्दी सावन भी शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। ऐसे में भगवान शिव की यात्रा करने के लिए, उनको जलाभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त इंतजार भी कर रहे हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। सुनते रहिए सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

सुभारती आजादी रेडियो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिव परिवार हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है। शिव के गले में सर्प है, उनके पुत्र भगवान गणेश का वाहन मूषक है, भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है और माँ पार्वती का वाहन सिंह है। स्वभाव से ये सभी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, फिर भी शिव परिवार में सभी साथ रहते हैं और संदेश ये मिलता है हमें कि परिवार प्रेम और स्वीकार्यता से चलता है, समानताओं से नहीं। आज के समय में जब परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ये तो हम सभी को मानना होगा कि हम सभी के विचार विमर्श अलग अलग होते हैं, सभी की विचारधाराएं अलग होती हैं। इसी वजह से परिवारों में बिखराव भी की स्थिति पैदा हो जाती है जब एक दूसरे के विचार आपस में टकराते हैं। भगवान शिव के परिवार से हम सभी को ये सीखना चाहिए कि सभी के विचार अलग अलग होते हुए भी हम सब एक साथ रह सकते हैं और यही एक सच्चा परिवार भी कहलाएगा कि बेशक विचार चाहे जितने भी अलग अलग क्यों न हो, पर सभी एक साथ प्रेम के बंधन में बंधे हों।

गुड मॉर्निंग, सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूं वास्तु कृष्णा। शिव शमशान में क्यों रहते हैं? ये एक गहरा प्रतीक है। शमशान हमें याद दिलाता है कि धन पद अहंकार और शरीर ये सब साथ नहीं रह जाते हैं, इसीलिए शिव वैराग्य सादगी और सत्य का संदेश देते हैं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उनके साथ जाने वाले जितने भी लोग होते हैं शमशान में या गंगा जी घाट पर जाते हैं मृत्यु के बाद, तो वहां पर सभी जाकर एक सैड भाव में डूब जाते हैं, लेकिन वहां से निकलते निकलते सब लोग भूल जाते हैं, यानी सब अपनी एक नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आते हैं। और इसीलिए इसको माया का लोक कहा जाता है कि यहां में मृत्यु भी बस कुछ मिनट या कुछ पलों के लिए ही इस संसार की मोह माया से अलग कर पाती है और तुरंत हम वापस उसी दुनिया में लौट आते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये संसार नश्वर है, माया का लोक है, यहां कुछ भी फिक्स नहीं, परमानेंट नहीं, यहां एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी का संदेश भगवान शिव हमको शमशान में रहकर देते हैं। वो हमको सिखा रहे हैं कि धन, आपका यश कीर्ति पद, आपका अहम, आपकी ईगो अहंकार और ये शरीर, पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ यहीं पर रह जाता है। संग जाएंगे तो बस आपके कुछ कर्म, इसीलिए अपने कर्मों पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। वैराग्य सादगी और सत्य का संदेश दे रहे हैं भोलेनाथ हम सभी को।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ होता है? ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि समर्पण का भाव है। ओम नमः शिवाय का अर्थ होता है, मैं अपने अहंकार को छोड़कर उस परम कल्याणकारी चेतना को नमन करता हूं। तो जब भी ओम नमः शिवाय आप बोले, आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। इसका सीधा सिंपल सा अर्थ बनता है कि भगवान के चरणों में हम नतमस्तक हो रहे हैं, अपने अहम, अपनी ईगो और अपने हर प्रकार के इस मायालोक के बंधन को तोड़कर हम उस परम कल्याणकारी उस चेतना भोलेनाथ के चरणों में खुद को नतमस्तक कर रहे हैं। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। भगवान शिव हमें ये नहीं सिखाते कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, वो सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच में भी मन को शांत, विचारों को निर्मल और अपने हृदय को करुणामय कैसे रखा जाए। यही शिवत्व है और यही सावन का भी वास्तविक संदेश है। यही जलाभिषेक करते समय आपके मन में भाव उमड़ घुमड़ कर आने चाहिए कि भोलेनाथ जो हमको सिखा रहे हैं, हमें उन विचारों पर चलना भी चाहिए। वो कभी किसी मोह माया के बंधन में बंध नहीं पाए, वो भस्म लपेट कर रहते हैं, वो इस संसार की किसी भी माया के बंधन से परे हैं। ये संदेश है सभी भक्तों के लिए कि कभी भी इस माया लोक के बंधनों में अत्यधिक फंस न जाना। आपका जो असली धाम है वो परम धाम है, शिव का धाम है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: दुनिया बड़ा खूंखार है, जीवन होने लगा दुश्वार है, दर्द आके सुनसान है।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो आरजे वंशी इन द स्टूडियो। हे हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे वंशी और लेकर लौटी हूँ आपके वाला प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सखी और संसार। इसी के साथ गुड वाली मॉर्निंग, सूर्यदेव निकल चुके हैं और अब थोड़ी सी राहत है जहाँ पर जल भराव था उन इलाकों में, और साथ ही साथ पौधों में भी कुछ राहत दिखाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जब एक्सेसिव वाटर हो जाता है ना तो पौधे भी थोड़े ख़राब होने लगते हैं और उतना उनमें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उनको ओवर बर्डन कर रहा है। अब देखो अति किसी भी चीज़ की हो वो आपको ओवर बर्डन करेगी ही, इसीलिए प्रकृति का भी यही नियम है, जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऑटो मोड पर अनसिस्टमेटिक हो जाती है। वहीं सड़कों पर थोड़ा सा आप आसपास अपने देख पाएंगे राहत की बात हो रही है, और इसी के साथ 9:10 भी हो गए हैं एज पर माई स्टूडियो क्लॉक। 13 जुलाई आज की तारीख है और दिन है सोमवार, एक बेहतर वीक जो है वो आज से शुरू हो गया है, और आई होप कि ये जो पूरा आपका वीक है ये पूरी पॉजिटिविटी से भरपूर हो, पूरी ऊर्जा से भरपूर हो और पूरी एनर्जी से भरपूर हो। इसी के साथ चलिए फॉर्मूला ऑफ द डे आज का सुन लेते हैं साथ में। तो क्या कहता है आज का फॉर्मूला ऑफ द डे, कहता है कि सफलता की शुरुआत हमेशा आपके विचारों से होती है, यदि आप मान लेते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आधा रास्ता आपको खुद ही तय करना होता है। अगर आपने मान लिया तो आप ऑलरेडी आधा रास्ता तय कर चुके हैं। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमारा दिमाग जो होता है ना बहुत ही पावरफुल है, जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले खुद पर भरोसा कर रहे होते हैं ना तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो डबल हो जाती है अपने आप, और मेहनत भी फिर आप उसमें दुगनी ही करते हैं। अपनी काबिलियत पर कभी भी आपको शक नहीं करना है, और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो इसीलिए अपनी इस पॉजिटिविटी को मेंटेन रखें, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, और जब भी कभी आप कोई काम करने के बारे में सोचते हैं तो उसको सकारात्मक तरीके से शुरू कीजिए। अगर आप पहले ही सोच डालेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं कैसे करूँगी या करूँगा, इसके लिए तो मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है, तो बाय गॉड वो काम आपको रुला देगा। अगर आप करना चाहेंगे ना तो भी आप उसको बहुत ही मुश्किल से कम्प्लीट कर पाएंगे, लेकिन शुरू में ही अगर आप एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, अच्छे से होगा और मैं इसमें अपना 100% दूंगी, तो देखिएगा कि आपका जो आधा काम है ना वो ऑटोमैटिक हो ही जाता है और आपको आगे वाला जो टास्क है वो भी इजी लगने लगता है। वेल, आपका दिन शुभ हो और ऊर्जावान हो। फिलहाल फिल्मी वेरी फिल्मी गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर आई हूँ आपके पास. प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार. 9:24 और अभी हमने गाना एंजॉय किया जहर मूवी का. और इसी के साथ दोस्तों, आज की बात कर लेते हैं. आज यानी 13 जुलाई की बात कर लेते हैं कि आज की जो डेट है, आज की जो तारीख है, ये क्यों खास हो जाती है. असल में आपने सुना होगा कि सभी लोग ना इस चीज़ पर जोर देते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को ठुकराओ या उसका बहिष्कार करो. तो क्या आपने सोचा है कि इसकी शुरुआत कब शुरू हुई होगी या किसने की होगी? क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ रैंडम तो ये नहीं आता है, क्लिक नहीं होता है थॉट ऐसे. क्योंकि आज इतने सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर इंडिया से बाहर की ही मैन्युफैक्चरिंग हो रखी होती है उनकी. लेकिन ऐसे में अगर कोई आदमी ये आपसे कह दे कि भाई हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपना ही इन हाउस प्रोडक्शन करना शुरू कर दें और इन बाहर की जो चीज़ें हैं, जो बाहर से आती हैं, आयात जिनका होता है, वो हम बहिष्कृत कर दें उन सामानों का, इससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, स्किल्स अपग्रेड भी होंगी और हम होममेड चीज़ें यानी कि इन हाउस प्रोडक्शन की चीज़ें ही यूज़ कर पाएंगे. तो आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत आज ही के दिन 1905 में की गई थी. अब इसके पीछे की कहानी क्या कहती है? असल में कलकत्ता के प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम संजीवनी था, उसने पहली बार ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सुझाव दिया था, जो आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन की नींव भी बना था. तो ऐसे कुछ शुरुआत हुई थी. संजीवनी एक वीकली आता था, उसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स आए, कुछ ऐसे अनुच्छेद आए कि उसके बाद लोगों में इस बात की ललक जगी कि हाँ, हमें अपने इन हाउस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए और इन भारी सामानों को बहिष्कृत करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना. जिस चीज़ का प्रोडक्शन हम घर में ही कर सकते हैं तो क्यों ही बाहर से लेना. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ की जो परंपरा है वो ये कहती हैं कि बाहर की चीज़ें ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि हेल्थ भी आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है. तो इसीलिए वो लोग घर में ही बनाना प्रेफर करते थे. कुछ भी चीज़ जो पॉसिबल हो सकती थी, उन्होंने हर चीज़ को अपने घर में बनाया और उसको बहुत ही पौष्टिक बनाया. आपके घर में क्या बनता है जो बहुत ही पौष्टिक होता है और बाकी के लोग जिसको बाहर से प्रेफर करते हैं, लेकिन आप घर में बने हुए ही उस चीज़ को प्रेफर करते हैं, मुझे बता सकते हैं. नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा, और आप चाहें तो इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. फिलहाल कनेक्ट करूंगी आपको इस प्यारे से गाने के साथ. उसके बाद आई विल बी बैक टू यू. कहीं मत जाइएगा दोस्तों.

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर,
1: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों 9:45 और बहुत ही खूबसूरत सा दिन इसलिए कहूंगी क्योंकि सूर्य देव चमक रहे हैं बाहर, लेकिन हाँ थोड़ी गर्मी ज्यादा है। तो ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें और स्ट्रीट फूड को थोड़े टाइम के लिए प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस वक्त बैक्टीरियाज इतने एक्टिवेटेड मोड में होते हैं कि आप कब किस चीज़ से बीमार पड़ जाएं आपको ना कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ चलिए आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत सखी और संसार में। संसारिक बातें आपसे कर रही हूँ और अपडेट कर रही हूँ आज के इतिहास के बारे में। अगर हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करें जो कि विश्व की हो जाती हैं, उस पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि सन 1923 में आज ही के दिन हॉलीवुड साइन की स्थापना की गई थी। असल में अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी के ऊपर ज़मीन की कीमतों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन के तौर पर पहली बार हॉलीवुड लैंड लिख दिया गया था, जिसे बाद में बदल कर सिर्फ हॉलीवुड कर दिया गया था। तो ये एक पीछे की बात हो जाती है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इथोपिया में बड़े अकाल से पीड़ित लोगों की मदद के लिए लंदन और फिलाडेल्फिया में एक साथ लाइव एड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया।

1977 की बात करें तो असल में जो बिजली होती है आसमानी बिजली, वो गिर गई थी न्यूयॉर्क में, और उसके बाद वहाँ पर ऐतिहासिक ब्लैकआउट हो गया था, यानी कि अंधेरा हो गया था, जो कि करीब

कि मजबूरी का फायदा ना उठाए, है ना। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना मांझा। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 9:57 हो गई हैं और अभी बरसात मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना भी एंजॉय किया हमने इसी के साथ। दोस्तों, बरसात के बाद ना वैसे यार बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ज़मीन में से ना क्योंकि हीट निकल रही है, तो ऐसे में कुछ उमस भरा मौसम हो गया, चिपचिपाहट भी होने लगी है अब तो इसके लिए भी कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, लेकिन 11 बजे के बाद। फिलहाल आपको अभी बता देती हूँ कि आज का दिन और ख़ास क्यों हो जाता है। असल में अगर आपने नाम सुना हो प्रकाश मेहरा, यस द फेमस प्रकाश मेहरा, जो कि भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्माता और निर्देशक हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर और शराबी जैसी आइकॉनिक फिल्में दी हैं हमारी इंडस्ट्री को। और बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का दौर भी इन्हीं ने शो शुरू किया था। तो आज इनका है जन्मदिन, आज की तारीख 13 जुलाई। इसी के साथ आपको बता दूं कि हैरिसन फोर्ड, जो कि हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर रहे, जिन्हें पूरी दुनिया स्टार वॉर्स यानी कि हैंड सोलो और इंडियाना जोन्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जानते हैं, उनको भी आज हैप्पी वाला बर्थडे। इसी के साथ पैट्रिक स्टीवर्ट, जो कि प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिन्हें स्टार ट्रेक यानी कि कैप्टन जीन ल्यूक कार्ड और एक्समैन सीरीज में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के रोल के लिए दुनिया भर में बेहद प्रसिद्धि मिली थी, बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी, इनका भी आज हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर बात करें केन जियोंग की, जो कि मशहूर हॉलीवुड कॉमेडियन हैं और एक्टर हैं, जिन्हें फिल्म द हैंगओवर में उनके यादगार रोल के लिए जाना जाता है। मज़ेदार बात यह है कि वो एक्टिंग में आने से पहले

अपने झंडे काटिए। फिलहाल और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी के सारी। कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ आपके लिए जो हो जाती है बेहद ही खास। लेकिन लेकिन लेकिन जनाब, आप भी मुझसे अपनी बातें साझा कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर है 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, या साथ ही साथ आप सोशल हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जाना होगा इंस्टाग्राम, मेटा, एक्स और यूट्यूब पर। चारों ही हैंडल्स पर हम आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आपको सर्च करना होगा आजाद हिंद रेडियो। वेल, 10 बज गए हैं पूरे के पूरे और 10 बजे को एंजॉय करते हैं विद दिस बुरे बुरे सॉन्ग।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, Rashtra Pratham, Sadaiv Pratham.
3: Chahenge tumhe bas

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. तो दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी. वेल, हम ना बहुत सारी बातें आपसे कर ही रही हैं, 10:12 और 13 आज की तारीख, और बता रही हूँ आपको कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास, आज के इतिहास के पन्ने क्या आप तक पहुँचाते हैं पैगाम. तो आपको बता दूँ कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और मशहूर रोमन तानाशाह व सेनापति जो कि जूलियस सीजर रहे, इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म आज ही के दिन लगभग 100 ईसा पूर्व माना जाता है, और उन्होंने ही दुनिया को जूलियन कैलेंडर भी दिया था जिसके मुताबिक आज हम चल रहे हैं. इसी के साथ आपको बता दूं कि वॉल शोइंगा जो कि नाइजीरिया के प्रसिद्ध लेखक हैं और नाटककार भी हैं, जिन्हें साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आज ही के दिन ये बात हुई थी. इसी के साथ आज के दिन और क्या हुआ था, आज के दिन हुआ था असल में भारत की मशहूर क्लासिकल वोकलिस्ट, नाम है इनका केसरबाई केरकर, उनका एक गाना था जिसका नाम था जात कहाँ हो, इतना प्रसिद्ध हो गया था. उसे फिर नासा द्वारा अंतरिक्ष में वाइजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए भेजा गया था, और ये काम भी आज ही के दिन हुआ था, तो इसलिए ये दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है. मंडे मॉर्निंग है और आई होप कि आपका पूरा जो वीक है पूरा एनर्जी से भरपूर रहे, आपका प्रोडक्टिव ये वीक रहे, और आपके सारे जो बिगड़ते काम हैं वो बन जाएं इस वीक में. इसी के साथ और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूँगी सारी की सारी. बट बिफोर दैट आपको बता दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी. आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और बहुत ही आसानी से आप हमें सर्च कर सकते हैं. आज़ाद हिंद रेडियो नामक हमारा रेडियो ऐप है, इसको आप डाउनलोड करें. इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे हमारे जो तमाम सोशल हैंडल्स हैं या आप हमें हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो भी आपको वहीं पर बहुत ही ईजी मोड में उपलब्ध हो जाएंगे, और बस एक क्लिक की दूरी और आपका जो गाने की फरमाइश है या आपकी जो बातें हैं वो हम तक ज़रूर पहुंचेगी. फिलहाल पहुंचेगा एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके पास, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू. कहीं मत जाइएगा, बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी हैं आपसे. ये गाना आपके लिए.

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट 10:29 और चिलमन। अभी हमने गाना एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी किसना, और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में और क्या बातें आपसे होने वाली हैं बता देती हूँ सारी की सारी, लेकिन धीरे धीरे। फिलहाल आपको बता दूँ कि आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार और ढेर सारी बातें वंशी के साथ हो रही हैं। प्रोग्राम तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन आगे बढ़ रही हैं कुछ बातें। असल में आपने WWW के बारे में सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन क्या आपने इसके इको फ्रेंडली वर्जन के बारे में सुना है? मतलब कि WWW कुछ और भी है। वो क्या है? असल में वो है वुड वाइड वेब, यानी कि वुड वाइड वेब। अब ये क्या होता है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो पेड़ हैं जब बहुत सारे होते हैं आसपास, आपने देखा होगा कि अगर एक पेड़ में कीड़ा लग जाता है तो दूसरे पेड़ में भी कीड़ा लग जाता है ना। ऐसा धीरे धीरे ये प्रोसीजर होने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब एक पेड़ में कुछ कीड़े लग जाते हैं या उसको किसी तरीके की बीमारी हो जाती है, तो उसके बाजू वाले पेड़ की वजह से वो ठीक भी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या है साइंस? असल में पेड़ भी आपस में बातें करते हैं, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। और साइंटिफिकली जो बहुत सारी रिसर्च हैं उनका ये कहना है कि जब पेड़ के अंदर यानी कि ज़मीन के नीचे मौजूद जो फंगस होती है, जो फंगल कवच होता है, फंगल कवर जो होता है, उसके ज़रिए एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं और वे इस नेटवर्क का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो एक दूसरे को खतरों से बचा सके। जैसे कि कीड़ों के हमले से वो एक दूसरे को चेतावनी दे देते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन भी आपस में शेयर करते हैं। ये होता सारा कैसे है? ये होता है जड़ों के माध्यम से, और इसी चीज़ को वुड वाइड वेब कहा जाता है, जिसमें एक पेड़ दूसरे पेड़ की हेल्प करता है। न्यूट्रिशन की बात करें उस संदर्भ में, या बात करें चेतावनी देने के संदर्भ में, तो वो चेतावनी देता है दूसरे पेड़ को कि ऐसा ऐसा कुछ है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स ही बातें करते हैं, प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा विज्ञान है, वो भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और क्या बातें आपको पता है वुड वाइड वेब के बारे में, ये आप मुझे 9639012111 पर बता सकते हैं। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, सेहत सखी प्रोग्राम, सेहत सखी और संसार प्रोग्राम में ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। 10:44 हो गई हैं और इसी के साथ आपको बता दूं कि एक आप प्लेस को इमेजिन कीजिए कि क्या कोई ऐसी प्लेस भी हो सकती है कि जहाँ पर इतनी शांति हो, इतनी शांति हो, आखिर इतनी शांति हो कि आपको अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे। क्या आप इसी जगह कोई सोच सकते हैं? अगर हाँ तो मुझे बताइए, और अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, है ना। वैसे आपकी जवाब जो है, अगर हाँ रहे तो भी मैं आपको बताऊंगी, ना रहे तब भी मैं आपको बताऊंगी। असल में एक ऐसी प्लेस है जो कि अमेरिका में है, लोकेटेड अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय में एक ऐसा कमरा है जिसे दुनिया का सबसे शांत कमरा कहा जाता है। इसका नाम है एनीचॉय कैम्बर, और यहाँ इतनी खामोशी है, इतनी पीस है कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं, फेफड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं, अपने हड्डियों की रगड़ने की आवाज़ को भी साफ सुन सकते हैं। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड ये भी कायम है कि यहाँ पर आज तक भी कोई भी व्यक्ति 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाया है, टिक नहीं पाया है। मतलब उसके सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि जब आप अपनी अंदरूनी ये चीज़ें सुनते हैं तो इनकी जो आवाज़ होती है वो आपको काफ़ी हद तक डरा सकती है। आप इमेजिन कीजिए ना, आपके दिल की धड़कन और उसके बाद आपके फेफड़ों की आवाज़ आपको आ रही है, आपकी हड्डियों के रगड़ने की आवाज़ आ रही है, जैसे आपकी आप कहीं ऐसे प्लेस पर आ गए हैं जहाँ पर बहुत सारी मशीनें काम कर रही हों, और जब वो मशीनें आपके अंदर आपकी खुद की हों तो ये एक सच में दिल को डरा देने वाली चीज़ आपको लगेगी। इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं दोस्तों। तो अपने आपस में आपको बोलचाल रखनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, अपने अपनों से बात करती रहिए, क्योंकि समय का क्या ही पता किसी को, है ना। कब कोई कहाँ चला जाए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब आजकल आपने देखा होगा कि मिसकम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो रखा है, कम्युनिकेशन ब्रेक की, किसी को किसी की खैर खबर ही नहीं रहती। तो खैर खबर लेते रहिए अपने अपनों की, और उनसे पूछते रहिए कि आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, है ना। क्योंकि आप उनकी मदद नहीं कर सकते 1%, लेकिन जब आप उनको सुनते हैं, अपने अपनों को सुनते हैं, तो उनका जो भार है वो ऑटोमेटिक आधा हो जाता है और उन्हें हल्का फील होता है। और ये जो अकेलापन है ना, ये आज सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है कि अकेलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप अपने दोस्तों का, अपने सगे संबंधियों का, अपने भाई बहनों का, अपने माता पिता का, जो भी आप के आसपास लोग हैं, उनका खास तौर पर ध्यान रखें और उनसे बातचीत करते रहें। मेरी तो यही राय है आपको, बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। नंबर 9639012111 हो जाता है।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे करनी अभी बाकी है। पूरे 4 घंटे आपके साथ लाइव रहती हूँ और बहुत सारी बातें आपसे साझा करती हूँ। फिलहाल आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर वाली टीम, यानी कि कुम्हार हेड़ा गांव से हमारे साथ शाइना जुड़ गई हैं और सैयद मसरूर जुड़ गए हैं, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, तो बिल्कुल हम इनकी फरमाइश को पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले बातें भी तो आपसे करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं, जो कि मैं आपसे करती ही हूँ। फ़िलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि अब ये जो मौसम चल रहा है ना, तो ऐसे में ना आपको स्नेल्स, जिसको आप घोंघा बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन देखने को मिलेंगे, है ना। तो इनके बारे में ख़ास बात हो जाती है, वो ये असल में इनका स्लीपिंग टाइम इतना ज़्यादा होता है कि जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल, मतलब क्या ही कहूँ मैं आपसे, इतना ज़्यादा, ये लगभग 3 साल तक सो सकते हैं लगातार, है ना। तो ये एक कितनी बड़ी बात हो जाती है कि 3 साल तक कोई जीव जो है वो सोया हुआ है और इस लोक से बिल्कुल उसका रिश्ता थोड़ा सा टूट गया है। तो छोटा सा घोंघा 3 साल तक सो सकता है, और ऐसा वो तब करते हैं जब मौसम उनके ज़्यादा, मतलब अनुकूल नहीं होता है, या तो बहुत ज़्यादा सूखा होता है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये अपने जो है एक्टिवेट मोड में नहीं आ पाते हैं और ये अपने स्लीपी वर्जन में रहते हैं। तो ये एक अजीब सी बात हो जाती है, जो मुझे पता चली तो मुझे लगा कि चलिए आपसे भी साझा कर लेती हूँ। और अगर बात हो रही है कुछ ऐसे जीव की ही, तो मुझे एक अतरंगी सा जीव याद आता है जिसका नाम है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखने में थोड़ा ना अतरंगी सा होता है, 8 उसके पैर होते हैं और उसका एक सर होता है और चारों तरफ उसके पैर होते हैं। तो आपको बताऊं, ये ना बहुत अजीब सा जीव है, इसके पास 3 दिल होते हैं, हमारे पास तो एक ही होता है, लेकिन ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग होते हैं। कैन यू इमेजिन 9 दिमाग, और मैं यही सोच रही हूँ कि ऑक्टोपस 9 दिमाग के साथ करता क्या है, मतलब हाउ, कैसे डील करता है वो सारी चीज़ों के साथ, कैसे वो चीज़ों को मैनेज करके रखता है और सिस्टम में रखता है। तो ये एक सोचने वाला विषय है ना। इसके अलावा एक और यूनिक चीज़ है कि इसका खून का रंग जो होता है वो लाल नहीं होता, इसके खून का रंग होता है नीला, और इसके खून में तांबा यानी कि कॉपर पाया जाता है, कॉपर एलिमेंट इसके खून में पाया जाता है। तो ये कुछ अलग सी बात मुझे लगी, जो मुझे लगा कि चलिए आपसे भी साझा कर देती हूँ। फिलहाल फरे मूवी का गाना हम इंजॉय करेंगे कुम्हार हेड़ा वालों के नाम, तो चलिए इंजॉय करते हैं गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9639012111 पर।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मेरे यानी RJ वंशी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। 11:22 और 13 जुलाई आज की तारीख हो जाती है और दिन है सोमवार। जनाब बहुत ही प्यारा सा इंजॉय किया अभी हमने गाना, और इसके बाद अभी मैं आप तक पहुंचाऊंगी एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात। असल में आपने देखा होगा कि आपके घर में ना शहद होता है। शहद को अक्सर ग्लास के जार में या ग्लास की बॉटल में ही स्टोर करके रखा जाता है, आपने देखा होगा। इसके पीछे भी एक विज्ञान है, वो भी बताऊंगी। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपके घर में शहद रखा हुआ है और वो सालों साल से रखा ही हुआ है, आप उसी को उपयोग कर रहे हैं और अनचक आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या ये एक्सपायर तो नहीं हो गया होगा, मतलब इतने लंबे समय से हम इसको यूज़ कर रहे हैं या ये रखा हुआ है हमारे घर पर हमारे किचन में, तो क्या ये गर्मी सर्दी बरसात की मौसमी जो कीड़े होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं उसकी चपेट में आकर के ख़राब तो नहीं हो गया होगा। और आपने देखा होगा कि आजकल जब आप मार्केट से शहद को खरीद करके लाते हैं तो उसकी बॉटल पे ना एक प्रिंट होता है एक्सपायरी डेट का भी, है ना। तो आपको बता दूं कि अगर वो शहद असली होता तो उस पर कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। यही इस चीज़ को अलग और यूनिक बनाती है। असल में जो असली शहद होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। और इसकी पुष्टि कब हुई बता देती हूँ आपको। असल में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्राचीन मकबरों में खोज के दौरान 3000 साल पुराना शहद खोजा था और उसको पाया कि वो उस समय भी पूरी तरीके से खाने के योग्य और सुरक्षित था। तो शहद में क्योंकि नमी नहीं होती है और ना इसकी और जो इसकी एसिडिक नेचर होता है इसे कभी भी ख़राब नहीं होने देता है। हाँ, शहद को आपको नमी से बचाना होता है और इसका जो एसिडिक नेचर होता है वो इसको कभी भी ख़राब नहीं होने देता। और ऐसा भी कंसिडर होता है कि जितना पुराना शहद होगा उतना ही सेहत के लिए लाभकारी होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विनेगर होता है। विनेगर बोले तो सिरका, ये भी माना जाता है कि सिरका जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही अच्छा और सेहतमंद होगा। फिलहाल और क्या बातें हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो किचन है उसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, या उनकी बॉटल्स पर भी एक्सपायरी डेट देख करके आप उसको निकाल देते हैं। अगर आपके पास शहद है विद एक्सपायरेशन वैलिडिटी तो मान जाइएगा कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की गई है। फिलहाल ये गाना बहुत ही प्यारा सा आपके लिए फ्रॉम द मूवी ईमानदार, और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
2: दर्द छुपा रखा है तेरा ही दर्द

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad in Radio 90.0 FM, Nation First, Always First, 11:42 और दो कलियां मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना हमने इंजॉय किया इन द वॉइस ऑफ लता जी, बच्चे मन के सच्चे, सच में बच्चे मन के सच्चे। और बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को कैसे वैल्यू सिखा रहे हैं, कैसे एथिक्स सिखा रहे हैं, इस चीज़ का

हो जाता है क्योंकि आपकी स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, और ऐसे में उसके बाद पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, या फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी होने लगता है अगर हम इस सीज़न की बात करें। तो ऐसे में आप अपनी त्वचा का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसके बारे में आज ढेर सारी बातें आपसे करूंगी और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप घर पर रहकर ही ऑप्ट कर सकते हैं, और बेहतरीन घरेलू नुस्खे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सबसे पहला नुस्खा ये हो जाता है कि आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी और लेना है नीम पैक। ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ऑयली और पिंपल वाली होती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी ड्राई स्किन होती है, उनको ये नहीं ऑप्ट करना है। लेकिन हाँ, जिनको बात बात पर लगता है कि उनकी स्किन से ओवर जो एक्सेसिव ऑयल है वो बाहर आ रहा है और वो परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, तो वो इस पैक को लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, और नीम के जो एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं वो मॉनसून में होने वाले जो पिंपल्स हैं उनको रोक देते हैं, उनकी रोकथाम के लिए अच्छे होते हैं। इसको आप कैसे बना सकते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। आपको लेनी है 1 चम्मच, जी हाँ 1 चम्मच, क्या लेना है, 1 चम्मच आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी, उसमें आधा चम्मच नीम का पाउडर आपको मिक्स करना है, या फिर आप कर कह सकते हैं आप जो ताज़ा नीम है उसके पत्ते ले सकते हैं, उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और उसमें गुलाब जल मिक्स करके चेहरे पर आपको लगाना है। करीब 10 से 12 मिनट बाद आपको ये वॉश कर लेना है। उसके बाद देखना कि आपका जो ये शिकायत रहती है कि आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है बार बार, उसमें आपको थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। और आप ये ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बशर्ते अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको बिल्कुल उपयोग ना करें, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को ना जो ये मुल्तानी होती है वो बिल्कुल सूट नहीं करती है। फिलहाल दीवाना मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपको जरूर सूट करेगा, चलिए एंजॉय करेंगे ये गाना, उसके बाद आई बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा।

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। वेल दोस्तों, 12:12 और मैं हूं आपके साथ। आपके आरजे वंशी प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और फिलहाल मैं बातें कर रही हूँ अपनी सखियों से। जी हाँ, और मैं उनको बता रही हूँ कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं और इनसे कुछ खासा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, बशर्ते अगर आप पूरी बात ध्यान से सुने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ छोटा सा स्टेप मिस कर देते हैं, उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मानसून में बहुत, आपने देखा होगा, आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, और इस ऐसे में आप क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, आपको लेना है कॉफ़ी और शहद। अब इससे क्या करना है, असल में कॉफ़ी डेड स्किन को हटाकर आपकी स्किन को ग्लोइंग कर देती है, और शहद जो होता है वो आपकी त्वचा को बिना ऑयली किए नमी देता है, तो ये इसकी खास बात हो जाती है। अब आपको कैसे ये पेस्ट तैयार करना है ताकि आप उसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकें और आपका जो फेस है वो ग्लो और टैनिंग फ्री हो जाए, ग्लो से तो रहित सहित और टैनिंग रहित। तो आपको लेना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। इसे आपको चेहरे पर लगाकर 2 मिनट हल्के हाथों से स्क्रब करना है, ओके। और उसके बाद आपको करना है वेट कितना, 10 मिनट का, और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से रिंस वॉश कर लेना है। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है, और पर्सनली मैं कहूँ तो ये मुझे भी सूट करता है। बाकी कई लोगों की स्किन ऐसी होती है जो शहद के कांटेक्ट में आके इरिटेशन फील करती है, तो अब ये आपको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना होगा कि आपकी जो स्किन है वो शहद फ्रेंडली है या नहीं है। तो ये चीज़ का चयन आपको खुद करना होगा इस पेस्ट को बनाने से पहले, इस पैक को लगाने से पहले, ओके। फिलहाल इसके बाद आपको बताऊंगी टमाटर और बेसन का पैक आप कैसे बना सकते हैं। वैसे तो इनके पकौड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसका पैक किस चीज़ के लिए काम आता है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बिफोर दैट हम इन्जॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना, और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। आपका कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा, और ये गाना आपके लिए।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First, 12:27 और भागे रे मन, कहीं मत भागने दो, क्योंकि एक प्लेस पर या एक थिंग में कॉन्सेंट्रेट करके रखोगे तो मन नहीं भागेगा, आप ही भागोगे और ऊंची ऊंचाइयों को छू बैठोगे। फिलहाल मैं आपसे शेयर कर रही थी कि आप किस तरीके से अपने स्किन को संवार सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। एक तो आपकी स्किन आपको डल लगने लगेगी इन दिनों, और पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और अजीब किस्म की ना त्वचा से रिलेटेड एलर्जी भी इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट मोड पे रहती है। मतलब फंगल इन्फेक्शन की बात करें या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी सीज़न में, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपाहट होती है, उमस होती है, तो ऐसे में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, और ये जब आपकी स्किन पर हमला करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आता है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे में आप कैसे अपनी सेहत का और अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स आपसे साझा कर रही हूँ। फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमको लेना है टमाटर और बेसन, क्योंकि हमें बनाने हैं इसके पकौड़े। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पकौड़े भी आप खा सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी हम बनाएंगे इसका पैक, स्किन पैक। ये नॉर्मल से कॉम्बिनेशन स्किन जिनकी होती है ना, जो मतलब वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके लिए अच्छा होता है। टमाटर का रस मॉनसून में बड़े हुए जो पोर्स होते हैं, यानी कि ओपन पोर्स जो होते हैं, उनको छोटा करने के लिए काम आता है, और जो चिपचिपाहट हो जाती है अजीब सी, उसको भी दूर करने में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए टमाटर का ये पेस्ट बनाया जाता है और स्किन ट्रीटमेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है। एक चम्मच आपको बेसन लेना है और उसमें 2 चम्मच टमाटर का रस जो है मिक्स कर देना है। अब इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाना है, और उसके बाद ठंडे पानी यानी कि नॉर्मल पानी से ही आप को वॉश कर लें, और इसके बाद आप देखिएगा कि जो भी ओपन पोर्स थे या जो भी बड़े पोर्स थे आपकी स्किन के, वो थोड़े कम नजर आएंगे। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बैक टू यू।

लैला मजनू, शेरी फरहा, हीर रांझा, ये नाम है मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के। मगर अफसोस, आज की दुनिया में मजनू, फरहा, रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों, आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

Mario.

एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 12:44 और आज है 13 तारीख मंडे, यानी कि सोमवार। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। सेहत के बारे में बात हुई, सखी के बारे में सखियों से बातें कर रही हूँ और सांसारिक बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मानसून चल रहा है तो आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी और हो सकता है नई समस्या आपके स्किन को नॉक भी कर दे। तो इसीलिए आप क्या क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से स्टेप्स मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ ऐसी हमारी आदतें भी होती हैं जिनको अगर आप रेगुलर करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि कच्चे दूध की जगह गुलाब जल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में होता क्या है, हैवी क्लिनज़र या कच्चे दूध से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जब आप कच्चा दूध अप्लाई करते हैं, मलाई अप्लाई करते हैं, तो उससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और चिपचिपी हुई हो जाती है, क्योंकि इस सीज़न में चिपचिपाहट होना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चेहरे को साफ़ करने के लिए गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए स्प्रे भी आते हैं, वो भी यूज़ आप कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कॉटन से लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। ये बेस्ट ये टोनर हो जाता है और जो कि नेचुरल होता है, तो ये आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में उमस हो जाता है, उससे चेहरे पर सूजन कभी कभी आपको लग सकती है या आपको लग सकता है कि आपका चेहरा थोड़ा भारी हो गया है, तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर एक मलमल के कपड़े में बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, उसको लपेट देना है और चेहरे पर कम से कम 2 से 3 मिनट आपको मसाज करना है। इससे होता ये है कि पोर्स टाइट हो जाते हैं और तेल कम निकलता है। तो ओपन पोर्स दिक्कत करते हैं, आई नो, तो इनको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको टमाटर और बेसन का पैक बनाना सिखाया था, उसमें भी यही मेन एक फोकस था कि आप किस तरीके से ओपन पोर्स को बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि जब जब ओपन पोर्स होते हैं तब तब आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा कंटामिनेटेड होने के चांसेस होते हैं। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मेरा हो चला है आपसे विदा लेने का समय, और मिलूंगी आपसे कल इसी टाइम इसी प्लेस और बहुत सारी बातों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे। जाते जाते ये गाना आपके लिए फ्रॉम द मूवी बेटा। बाय बाय।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।
2: On.

जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा। किसान भाइयों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में गन्ने की फसल का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए। अगर आपके यहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। आज के कार्यक्रम में हम यही बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चावड़दासू रागनी के साथ।

जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि जो गन्ने की फसल होती है उसमें पानी बहुत ज्यादा दिनों तक भरा नहीं रहना चाहिए। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये गन्ना बेल्ट कहा जाता है, यहाँ पर गन्ने की फसल बहुत ज्यादा की जाती है। अब गन्ने की फसल में बहुत ज्यादा किसान भाई पानी की सिंचाई की व्यवस्था रखते हैं। सबको लगता है कि जितना ज्यादा पानी हमारे खेत में रहेगा फसल उतनी ही अच्छी रहेगी, जबकि ये सच नहीं है। फसलें चाहे पानी हो या यूरिया हो उतना ही लेती हैं जितना उनको जरूरत है, उससे ज्यादा ना फसल यूरिया डीएपी या फिर पानी कुछ नहीं लेती, उससे ज्यादा ओवर जो चीज होती है वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। जैसे एक दूसरे की देखा देखी बहुत सारे किसान भाई यूरिया की जो बोरियां या कट्टे लेकर आते हैं और गन्ने की फसल में लगातार डालते ही रहते हैं, उनको लगता है जितना ज्यादा यूरिया डाल देंगे उतनी ही अच्छी गन्ने की फसल हो जाएगी, तो ये सच नहीं है, ठीक नहीं है। नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर सबसे ज्यादा, और फसल को जितने नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो उतना ग्रहण कर लेती है, बाकी सब हवा में या पानी में घुलकर उड़ जाता है, इधर उधर वेस्ट हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी फसल को आदत पड़ती है ज्यादा से ज्यादा जो उर्वरक या यूरिया डीएपी डालने की, यानी आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमताएं कमजोर होती चली जाती हैं। सीधा सिंपल सा तरीका है, जितनी जमीन है उस हिसाब से नाप तोल कर आपको यूरिया डालना है। यूरिया की खपत भी कम हो इसके लिए आप समय समय पर अपने खेतों में ढेंचा की फसल को उगाकर उसकी जुताई कर दें, हरी खाद का वो काम करेगा, उससे भी आपकी बचत होने वाली है। गन्ने की फसल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको कुछ कहना है तो नंबर है 9639012111।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: यह है मेरठ का नंबर 1 सुबह भारतीय आजाद हिंदी रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में गन्ने की फसल का ध्यान किस प्रकार रखें। इस मौसम में सबसे बड़ी जो समस्या किसान भाइयों के सामने खड़ी होती है वो होती है खरपतवार की, क्योंकि बारिश के मौसम में खेत अक्सर गीले रहते हैं, उसमें हम जाकर निराई गुड़ाई कर नहीं सकते तो खरपतवार बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा किसान भाई अब ये तरीका अपनाते हैं कि जैसे ही धूप निकलती है वो स्प्रे कर देते हैं, चौड़ी पत्तेदार जो घास फूस होती है या खरपतवार होते हैं सबकी स्प्रे हो जाती है। तो पेड़ी की फसल हो या बुहेर की फसल हो, अब सब ज्यादातर स्प्रे करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्प्रे अगर आप अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान आपकी गन्ने की फसल को भी झेलना पड़ेगा। इसका उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं कि जिस खेत में आपने स्प्रे नहीं किया है उसका कलर कैसा है, और जिसमें स्प्रे किया है वो हल्का हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा स्प्रे के ऊपर भी निर्भर मत कीजिए। कोशिश कीजिए जब भी मौसम ठीक हो खरपतवारों को नियंत्रित कीजिए, उखाड़कर बाहर फेंक दीजिए या जुताई करवा दीजिए या जैसे भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमारा मकसद होना चाहिए खरपतवार को उखाड़कर खेत से बाहर फेंकना। अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में स्प्रे करते रहेंगे दवाइयों की, जहरों की, तो हमारी फसल को, मिट्टी को यह नुकसान पहुंचाएगा।
1: मेहरबानो, खुदा करे किसी का कोई हबीब ना हो, खुदा करे किसी का कोई हबीब ना हो, ये दाग वो है कि जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। मेहरबानो, इतनी तड़फन हीरे के दिल और दिमाग में थी, लेकिन मजबूर हीरे अटखेड़े पहुंच गई, और कब कि जब रांझा डोले तनी चौतर के और कहन लग्या, अरे छोरी छारी जाके मेरी खूबसूरत बहू को डोले से नीचे तार के लाओ, भला क्या उसकी बढ़ाई करता है गोरी की आंख का काजल। कहने लगा छोरियो सुनो, मेरी गोरी की आंख का काजल बादल से तेज है, आशिक को करती है घायल फूलों की सेज है।

0: कोरी के गले में हार है नौ हजार के, और सब देख रहे हैं तड़पते जो आशिक हैं प्यार के। मेहरबानों खूबसूरती को देखकर चारों तरफ से प्रशंसाएं बढ़ाई होने लगी, क्या खूबसूरत हीरे काने के लिए आई है।
1: वास्तु कृष्णा के साथ
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: मेहरबानों कयामत है, कयामत है किसी को प्यार करना इस जमाने में, कजा का सामान रखा हुआ है इस जमाने में। मेहरबानों जिस समय हीरे पिता होकर के जा रही थी तो उसने रांझे से वायदा किया था कि अगर 3 दिन के अंदर तेरी और मेरी मुलाकात न हो तो तू सादर पीर के मठ में बैठ जाना। मेहरबानों बस वो वक्त याद था, हीरे ने सरप काठे का ओड़ा ले दिया और रोने लगी अपनी ननद सेती के सामने कि जल्दी से अपने भैया को लेवा के लाओ, जहर मेरे शरीर में फैल रहा है।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: दोस्तों तीसरा दिन हो चुका और रांधे की आशा और उम्मीद टूट गई। सोचने लगा रूहे मजार पर यह मिश्रा खुदाएंगे मर जाएंगे पर दिल किसी से न लगाएंगे। मेहरबानो अपने कान छिदवा लेता है और फकीर बन गया। हीरे की याद में चुक वायदा खिलाफ हो चुका था और उधार शेती ने अपने भाई अखंड कहा, भैया तेरी जो घरवाली है मेरी भाभी हीरे को तो जहरी नाद में रख लिया। मेहरबानो कैसे शेती जब ये बताया कि मारे तो साधक पीर पूजा करता था। तुम उस मठ पर चले जाओ तो शेती जाती है और कैसे

0: मेरे मेहरबानों 100 औस भी ले आइए और पिए चतुरंग, तुरंत मिटे तन की तपन, शीतल हो गए अंग। मेहरबानों कोई सवारी साधक पीर के पसंद नहीं आई, फकीर की कहन लगा कि मेरे कोई सवारी पसंद नहीं है, तो फिर कैसे होगा, बताया मैं तेरी पीठ पे बैठ के चलूंगा। भला कैसे पीठ पे बैठ गया और सेती कैसे परेशान होगी।
1: वास्तु कृष्ण के साथ
2: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
3: अरे नाजुक नरम शरीर मेरा।
0: अरे फिर तो बहुत अच्छा
3: अच्छा रे, स्वाद सा आ गया होगा ना। अरे नाजुक नरम शरीर मेरा कम

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम
2: तुम मेहरबान हो
1: राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम
2: तुम मेहरबान हो रांझा खेती के साथ साथ और अठखेड़ आलिया मेहरबानों दुनिया के चलन को क्या कहिए इस दुनिया के चलन को क्या कहिए जो चीज है फानी होती है बरसों जो हकीकत रहनी है एक रोज कहानी होती है एक ठेस लगी कांटा सा चुभा एक ठेस लगी कांटा सा चुभा कुछ दर्द हुआ आंसू

0: मगर न मिलते तो न जाने कुदरत क्या हो जाता। और उधर रांझा क्या कहता है, हीरे मैं तुझे बताऊं, अगर तू मुझे न मिलती तो मैं अपनी कब्र खोद कर जिंदगी भर के लिए खुदा की कसम सो जाता। दोस्तों यहीं पर हीरे और रांझे का मिलन होता है और इतिहास यहीं पर समाप्त किया जाता है।
1: वास्तु कृष्णा के साथ
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
3: अरे मुझसे ज्यादा पापी बैठे रही

0: जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह है मेरठ का नंबर 1 सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो। गन्ने की फसल की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। गन्ने की फसल में इस वक्त आपको मिट्टी चढ़ानी चाहिए। पौधों के चारों ओर से मिट्टी चढ़ाने से वो गिरने से बचते हैं, जड़ों का विकास भी तेज होता है। अगर आपकी पेड़ी की फसल में आपने अभी तक मिट्टी नहीं चढ़ाई, बहुत सारे किसान भाई अपने फावड़े से खुद से खोद कर मिट्टी चढ़ाते हैं, या आप हल के द्वारा भी मिट्टी चढ़ा सकते हैं। जो हमारा पुश्तैनी वो एक हल होता था, बैल से या हम भैंसे के साथ मदद लेकर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बुहेर में भी मिट्टी आपको चढ़ा देनी चाहिए। दो लाभ होते हैं, जड़ें मजबूत होती है, जड़ों का विकास तेज होता है, और बारिश का जो पानी होता है वो हमारे खेत में ज्यादा गहराई तक जाता है, जिससे हमारी फसलें बेहतर होती हैं। हमेशा याद रखिए, अगर किसी बीमारी की या कोई उर्वरक चीजों की आप स्प्रे करना चाहते हैं, बरसात के मौसम में आपको स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्प्रे के कम 8 से 10 घंटे बाद तक कोई बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी उसका असर होता है। और इस मौसम में अक्सर 2-4 घंटे में बारिशें होती रहती हैं, चाहे हल्की हो, लेकिन हमारी फसलों के ऊपर जो हमने स्प्रे किया है उसका असर कम हो जाता है।
1: तो सारंदरी ने बता दिया कि मैं कभी हस्तनापुर रहा करती थी। एक दिन उस सुदक्षिणा का बड़ा भाई कीचक मदरा पान करके और अपनी बहन के महल में आता है। उसने उस सारंदरी को देखा और किस तरह क्या कहने लगा।

0: और सनातन के रंग सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग जय हिंद।
1: भवं भवानी सहितं नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
1: ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंधु में कभी भेद नहीं करता।
2: भगवान की भक्ति और शक्ति को जानिए।
3: जो चाल बदल दे काल का, कोई किसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, जिसकी रक्षा के लिए।
4: वास्तु कृष्णा के साथ हर सुबह दिन की शुरुआत जीवन को रूपांतरित कर देने वाली बातें सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भक्ति और भजन रोजाना सुनना ना भूलिए। सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो सुभारती रेडियो।
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
5: रख विश्वास, तू है शिव का दास।

0: भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
1: बुद्धं शरणं गच्छामि।
0: अब सुनिए बुद्धवाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ, सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: पावर ऑफ हनुमान।
1: यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः।
0: हर मंगलवार वास्तु कृष्णा के साथ सुबह 6 बजे से सिर्फ शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
1: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
2: जय श्री राम।
3: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: बुद्धं शरणं गच्छामि। अब सुनिए बुद्ध वाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ।
4: हर दिन के पल को चेतना में जी, जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो।
3: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: बुद्धं शरणं गच्छामि।
5: कृपया ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
6: गाड़ी संख्या 9.00 यानी 90.0 सुभारती एक्सप्रेस जल्द आ रही है शाम 5 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
5: हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं।
6: मेरठ का नंबर 1 रेडियो।
5: We wish you all a very happy, comfortable and safe journey.
7: दीदी ना ना ना।

0: ओनली ऑन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: इतनी कह के भारत माता वहां से चली जाती है। जब सुबह हुई सुभाष चंद्र बोस अपनी नींद से उठा तो सोपन का सारा हाल अपनी भावज के सामने कहता है, केरी भावज, आज मुझे सपने में भारत माता दिखाई दी और ये कहने लगी कि है बहादुर जाग, बगैर लड़ाई की राज नहीं मिलता, बिना त्याग की राज नहीं मिलता। जब उसकी भावज ने अपने देवर की बात को सुना तो उसने कहा कि इस बात की ताड़ कर दे, क्योंकि अंग्रेजों का राज बहुत बड़ा है, हमारी कोई ताकत नहीं है उनके सामने। उसकी भावज सुभाष चंद्र बोस को समझाती है और क्या कहती है, सुभाष चंद्र बोस को समझाती है और क्या कहती है,

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम
2: रोज हसर

0: वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: मेहरबानों रांधे के दिल में क्या क्या मलाल थे, रंग के बादल मंडरा रहे थे। तुझ में ए हमदम अगर है दम तो दामन थाम ले। तुझ में ए हमदम अगर है दम तो मेरा दामन थाम ले। हे अगर हैरान तो ए नादान फिर ना मेरा नाम ले। मेहरबानों बस हीरे के दिल में कांटा सा चुभ गया, जख्म बन गया और क्या सोचने लगी, इन दौलत वालों के आगे पार नहीं बचाएगी। कहीं ताकत के पंजे में उसे ख्याल आ गया, कहीं ताकत के पंजे में कलाई बदनसीबों की, कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटियां गरीबों की। भरे हैं गम के आंसू और आंख में बह नहीं सकते, तुम्हारे सामने लुटते हैं और हम कह नहीं सकते। मेहरबानों क्या आलम था।
3: अरे चली बिछड़ के हीरे जब रांझे की याद आई, तन पटमल।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुधारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वेलकम है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त, आपका अपना आरशे बिंदास, आरशे पंकज। इस वक्त में आपसे बातें करने के लिए आ जाता हूं। समय की बात करूं तो ठीक 5:07 और 20 सेकंड हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। इस वक्त कहाँ हैं आप, कैसे हैं आप, ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि हाल चाल मैं आपके जानता रहूँगा, बीच बीच में आकर आपसे बातें करता रहूँगा, कुछ अच्छी बातें, कुछ नॉलेजेबल बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा, इनफैक्ट पहुँचाऊँगा। बाकी आज की तारीख में दिन में कुछ खास आपको लगता है कि रहा है तो उसके बारे में भी आप बातें कर सकते हैं। 9639012111 मेरे स्टूडियो का नंबर होता है, कॉल मैसेज आप कर सकते हैं। एंड यस, सोशल मीडिया पर भी आप आ सकते हैं आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह पर हम आपको मिल जाते हैं बातें करने के लिए। फिलहाल जाना आपको कहीं नहीं है, बातें यहाँ यूं ही चलती रहेंगी एंड कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपके लिए मैं प्ले करता रहूँगा। फिलहाल बस यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज। और कहते हैं कि जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। आप अक्सर क्या करते हैं कि समय जब आपके पास होता है तो उस समय में कुछ ज़रूरी काम छोड़कर आप अन्य कामों में लगे रहते हैं, शायद वो ज़रूरी आपके लिए ना होते हों, ये आपको पता भी होता है, लेकिन फिर भी आप ये सोचकर लगे रहते हैं कि अभी जो काम करना है वो थोड़े समय बाद कर लेंगे, आज नहीं हो पाया तो कल कर लेंगे। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम समय की वैल्यू, टाइम की वैल्यू समझ नहीं पाते हैं, और जब समय निकल जाता है तब हमें पछतावा होता है। तो इसलिए आज आपके पास जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अमूल्य है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और जो भी आप अच्छा कर पाएं इस अमूल्य समय में वो करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने आप को जानें, अपना एक लक्ष्य बनाएं और कुछ नया करें। फिलहाल सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: रंग, रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जो तुम ना हो तो हम भी कुछ नहीं, शायद ट्रैक का नाम एंड अरिजीत सिंह की वॉइस में ये ट्रैक था। लव आजकल का जो सीक्वल आया था जिसमें कार्तिक आर्यन नज़र आते हैं, सारा अली खान नज़र आती हैं, ठीक है, अच्छी खासी मूवी थी और चली थी सीक्वल होने के बाद भी। बाकी टाइम की बात करें तो ठीक 5:42 हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। एंड यस, मैं हूं आपके साथ, आपका अपना दोस्त, आपका अपना पहनदास आरजे पंकज, आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, बातें कर रहा हूं। तारीख आज 13 जुलाई, 11 तो दो दिन पहले थी, ठीक है। बात यह है कि भाई अभी जो है कांवड़ यात्रा जो है धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, जो कलश कांवड़ लेकर चलते हैं कांवड़ वाले, वो शुरू हो चुके हैं और इक्का दुक्का आपको सड़क पे नज़र आ ही रहे होंगे। तो ऐसे में क्या है कि थोड़ा जब आप कार से जा रहे हों या बाइक से जा रहे हों, थोड़ा दूर से आपको दिख जाएं तो उनका बचाव करते हुए अपने वाहन को चलाएं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वो लोग लाते हैं, हरिद्वार से लेकर चलते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है एंड काफ़ी सारी वीडियोस हर साल आती हैं कि उनका नुकसान हो गया, तो ये चीज़ें ना हो, है ना, इनका ध्यान रखना भी थोड़ा सा जिम्मेदारी है। एंड ये तो होता है कि कलश कांवड़ लेकर जब वो चलते हैं भारी भरकम तो काफ़ी ज़्यादा सड़क पर स्पेस घिर जाता है, तो थोड़ा सा बस हल्का सा बचकर चलें, ये आपको ध्यान में रखना है जब आप उनको देखें। बाकी कोई और नई अपडेट कहीं पे कुछ ट्रैफिक है या कुछ है तो ज़रूर आप हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम अपने अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाएं। फिलहाल तो हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, कुछ अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे, बीच बीच में आता रहूँगा, बातें आपसे करता रहूँगा, कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचाता रहूँगा। बाकी जाना आपको कहीं नहीं है, जैसे अभी बने हुए हैं ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। जय हिंद, जय भारत।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: ना पशु दे।
1: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद होगा कि हम पहले भी टीबी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर इस विषय पर लौटे हैं। वजह कि टीबी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। मैंने खुद कई बार गांवों में लोगों को कहते सुना है, अरे टीबी तो पहले हुआ करती थी, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं, हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीबी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं, मौसम बदला है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या टीबी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीबी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमेशा कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी।
1: धन्यवाद आरजे जी, और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। दरअसल आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिनकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा थकान बनी रहती थी। घर के लोग पूछते क्या हुआ तो वह हंसकर कह देती, अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था, शाम होते होते हल्का बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई। लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुआ, बलगम की जाँच हुई और फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
0: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन टीबी आखिर है क्या?
1: देखिए साथियों, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, रीढ़, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
0: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या हर टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी 2 तरह की हो सकती है, एक लेटेंट टीबी जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वे सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते और वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों की एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है,
0: तो ये फैलती कैसे है?
1: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इन्हें सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
0: गांवों में लोग कहते हैं साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
1: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
0: ठीक है टीकन भाभी, लेकिन अब ये तो बता दो किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: अगर 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बलगम में खून आए, तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
0: टीकन भाभी, क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
1: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहद जरूरी है।
2: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
1: जी हाँ, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोगों, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
2: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो यह सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक हैं। पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है, लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
2: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
1: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच है बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद हैं या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती रही है और आज भी महत्वपूर्ण है। आजकल लोग बनात और ट्रूएना जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
2: आजकल लोग बनात और ट्रूएनेट जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
1: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं। इनकी खासियत यह है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कहीं बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में बहुत मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
2: और एक्सरे की क्या भूमिका होती है? क्योंकि जब भी कोई लंबे समय तक खांसता है, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं।
1: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की पहचान में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांचें की जाती हैं, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावी होंगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
2: साथियों, बात बिल्कुल साफ है। अनुमान नहीं, जांच जरूरी है। खांसी हो तो घरेलू नुस्खों में महीनों न उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं।
0: खांसी हो लगातार तो मत करना इंतजार, समय पर जांच कराओ, टीबी को दूर भगाओ। सेहत सही, लाभ कई।
2: टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूँगा, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करती है जो खुद अस्पताल पहुँचते हैं?
1: नहीं, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसे हम पैसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँवों, बस्तियों, दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते, उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
2: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
2: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है।
1: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो बाकी सदस्यों की भी जांच करवाना बेहद जरूरी है। इसे संपर्क जांच या कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की जांच जरूर होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
2: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर और शर्म है। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं कराते और दूसरों को भी नहीं बताते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्तों पर असर पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, यह कोई पाप नहीं है, यह कोई चरित्र की कमी नहीं है, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा समझदारी है। समय पर जांच न कराने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं?
1: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 सप्ताह से ज्यादा रहे तो जांच जरूर कराएं। दूसरी, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथी, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच कराएं। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
2: और मैं इसमें एक छठीन बात जोड़ना चाहूँगा। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि थकान उम्र की वजह से है, उन्होंने सोचा कि कमजोरी सामान्य बात है, उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर सेहत की शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: खांसी रहे दो हफ्ते से पार, जांच कराना है समझदार। टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।

एक नंबर अभी आपने सुना एंड गुरनाम बुलर की वॉइस में ये ट्रैक था। बाकी लाइव मेरी आपसे बातें हो रही हैं। एक लिसनर है हमारे, पता नहीं गुमनाम लिसनर है, नाम अपना नहीं लिख रहे हैं और लिख रहे हैं आर यू देयर। यस आई एम हेयर। टाइम की बात करूं तो ठीक 6:15 हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। एंड यस, लाइव आपसे मेरी बातें हो रही है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बंदास आर शे पंकज। मौसम फिलहाल ठीक है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। बीते दिनों में ये देखा गया था कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो हल्की हल्की नमी आने लगी थी, है ना। लोग कहने लगे थे कि हाँ थोड़ी सी राहत तो मिल रही है लेकिन बारिश भी ज्यादा हो रही है, अब गर्मी ज्यादा हो रही है, तो अब बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज में उमस ज्यादा हो रही है। तो भाई मतलब कैसे भी किसी भी तरह से शांति नहीं है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। बाकी आपके यहाँ का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, क्योंकि ऐप के माध्यम से भी हम आप तक पहुँचते हैं और कई जगह पर सुने जाते हैं, तो जहाँ से भी आप सुन रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ का मौसम का क्या हाल है। बाकी बातें चलती रहेंगी यहाँ पर, अच्छी अच्छी जानकारी हम यूँ ही आप तक पहुँचाते रहेंगे। टीवी के बारे में थोड़े समय पहले एक प्रोग्राम हमने आपको सुनाया, कैसा लगा वो प्रोग्राम वो भी आप मुझे बताइएगा। सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कपिल, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका।
1: जय हिंद एंड थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ में जो है इस पॉडकास्ट में बैठा हूं और अपने फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा यहां बता पाऊंगा।
0: सर, सबसे पहले आपके विजन के बारे में एंड आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जो हमारी विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो सारी भावनाएं, सारी वैल्यूज जो है वो दिखती हैं, और बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ में हमारी कल्चरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी में भविष्य में इंटरमिंगल होना है वो चीज सिखाई जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में हम तकनीकी जो शिक्षा है उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे उसको ग्रहण करकर और देश के मूल्यवान नागरिक बनकर समर्पित होते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ में हमारे फैकल्टी भी, हम हर साल उनके लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए जो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और जो इंडस्ट्री में उस टाइम पर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे वो शिक्षकों को उनके ऊपर ट्रेन करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एकेडमिक्स है उसके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई अंतर ना रहे। और देखा जाए तो हमारे पास में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अधिकतर सभी ब्रांचेस हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी कई सारे कंसंट्रेशंस हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है पहला, दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेशन हैं। इसके साथ में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब एविएशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारे पास डिफेंस में कोर्सेज हैं, हमारे पास मास्टर्स में अधिकतर सारे कंसंट्रेशन हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो मास्टर्स, चाहे कंप्यूटर साइंस में, अधिकतर सभी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो ये सब चीजें संगठित करती हैं एक अच्छी शिक्षा पद्धति को, और जो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और जिस चीज में उनकी रुचि होती है उसी में वो अपने आप को एडमिशन लेकर उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हमने फिलहाल हमारी जो काउंसिल है, टेक्निकल काउंसिल है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे हमने AICT आइडिया लैब जो होती है उसके लिए हमने ग्रांट लिया है, हमें AICT ने अप्रूवल दिया है, और उसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए लगा के हमारी एक आइडिया लैब तैयार हुई है, जिसके अंदर सभी मशीनें बिल्कुल नए स्तर की है, बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे उस AICT आइडिया लैब में जाकर जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्ड है उनको डेवलप करते हैं। अभी हमने फिलहाल में ही अगर देखा जाए तो हमने एक अन्वेषण इवेंट होता है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करवाती है, उस अन्वेषण के अंदर हमारे बच्चों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ रीजन में हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और उसके अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई थी, 30 यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों ने कॉम्पीट करके फर्स्ट रैंक लेके आना, वो जो हमारे प्रयोग है, हमारे प्रयास है, चाहे वो AICT आइडिया लैब है या और बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो रिसर्च फैसिलिटीज हमने यहाँ डेवलप की है उसके अंदर बच्चे जाके टीचर्स जाके जो काम करते हैं उसी का कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है।
0: सर, डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जहां तक बात आती है हमारी फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज हमारी इस टाइम पर बड़ी अच्छी है, मैं कहूंगा कि अनपैरेलल्ड मैच है। आप इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो जो शानदार सेट हमारे पास में है फैकल्टीज का वो शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता हो। अधिकतर सारी फैकल्टीज हमारे पास में वो PhD होल्डर्स हैं और IIT से ग्रेजुएट हैं, NIT से ग्रेजुएट हैं, वो बच्चों के साथ में जो अच्छी स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और जहां तक बात है बच्चों को हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो उसके बाद में उसको गेट की तैयारी हम कराते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी निकलती है उसमें बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट क्वालिफाई करके। तो वो सब करने के बाद में बच्चा जो है जब यहाँ पर तैयारी उसको मिल जाती है, बच्चे को कहीं बाहर कोई अलग वर्टिकल उसको तलाशना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीटेक करने के बाद में बच्चा जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो दिल्ली नोएडा में जाके ट्रेनिंग किया करता था, पर आज की डेट में हमने इंडस्ट्री से पार्टनरशिप की है और उन इंडस्ट्रीज को हम अपने कैंपस पे लेके आए हैं और वो हमारे कैंपस पर ही बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चा जो वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले बहुत दूर जाया करता था वो आज उसको यहीं पे मिल जाती है, हमारे कैंपस के अंदर वो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई हुई है। हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में एमओयूज किए हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं। स्टूडेंट रिलेशन यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर हमारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के बच्चे यहां पे आ सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रांस की और जर्मनी की है उनके साथ में भी कुछ एमओयूज किए हैं जहां पर बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमारे बच्चे जो है वो भविष्य की तैयारी करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं, नागरिक के साथ में एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनते हैं जो देश की उन्नति में और भागीदारी में एक अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं।
0: सर, आज के टाइम में जहां बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं या एआई की हेल्प से सीख रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जहां तक बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एडेड एडवांटेज है जो पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, है ना, अब मिलना शुरू हुई है। तो इसको बच्चे एडेड एडवांटेज के तौर पर लें, नहीं तो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का काम है वो यूट्यूब पे नहीं चल सकता। यूट्यूब पे आप खाली लर्निंग कर सकते हैं, पर अगर आपको जो है टीम वर्क में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, आपको लैब एक्सपोजर लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, आपको और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो जो गैप है, जो टीम वर्क और जो मेंटोरशिप है, जो वो टीचर के सामने बैठ के बच्चा अपनी प्रॉब्लम जब रखता है, टीचर उसके ऊपर 1-to-1 उसकी काउंसलिंग करता है, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी में ही, कैंपस में ही मिल सकती है, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब को बच्चा जो है एक एडेड एडवांटेज ले और उससे ज्यादा कुछ ना, उसकी एक फैसिलिटी है।
0: ठीक है सर, अब आगे बढ़ें और बात करें एआई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
1: एआई से तो मैं ये देख रहा हूं पिछले काफी समय से कि एआई जो है वो अगर ना हो तो आज के समय में आधे लोगों की जॉब चली जाएगी। लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं एआई के ऊपर, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि जो इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो एआई नहीं सीखेंगे, उनके लिए सीखना मजबूरी होगी, नहीं सीखेंगे तो वो शायद कॉम्पीट ना कर पाए अपनी स्किल्स में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किल्स सीख के आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल स्किल्स के साथ में किसी इंजीनियर ने एआई की भी हेल्प ली हुई है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 4x बढ़ जाती है, 5x बढ़ जाती है। तो जब 5x वाला एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के पास में अवेलेबल होगा तो वो नॉर्मल प्रोफेशनल क्यों लेगी? तो एआई सीखना सबकी मजबूरी बनेगी और वो बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि एआई जो काम आप नॉर्मली जो है पूरे दिन में करते हैं, एआई उसको 5 मिनट में आपके लिए फैसिलिटेट कर देता है। तो आपका पूरा दिन बचता है, वो पूरा दिन आपके लिए और वैल्यूएबल चीजें करने के लिए बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं।
0: सर, एम्प्लॉयबिलिटी गैप भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी गैप इसलिए है कि बच्चा कॉलेज आता है, आज की डेट में थ्योरी पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम पास करना है। इंडस्ट्री एग्जाम पास नहीं मांगती है, इंडस्ट्री मांगती है उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसका डिसिप्लिन, उसके अंदर और वैल्यूज जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है वो चीज मांगती है। बच्चा सिर्फ पास होना जानता है, वो गैप हटेगा जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, स्किल एनहांसमेंट की बात होगी, तो ये गैप अपने आप हट जाएगा। हम मोर ओवर जो है फोकस करते हैं, जो आमतौर पर जो लोग फोकस करते हैं वो करते हैं थ्योरी के ऊपर। हमारी जो अप्रोच है सुभारती के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इन्हीं सभी सोच के साथ में बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो इन्हीं पद्धति के ऊपर दी जाती है। बच्चे को ज्यादा ज्यादा हम लैब के अंदर टाइम उसका स्पेंड करवाते हैं, तो जब वो स्किल उसकी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो गैप अपने आप खत्म हो जाएगा।
0: सर, कोई नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हुए हों उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
1: देखिए, हमने कई सारी क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज को भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरेटिव एआई को तो हमने पूरा सारे डिसिप्लिन में हमने डाल दिया है। और आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन आ जाता है। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ में हम जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में IoT की बात करते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं ये बड़ा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, और हम रेडी हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ।
0: सर, आप बात करें स्टार्टअप्स की या बात करें प्लेसमेंट की, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
1: देखिए, जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, मेरा मानना है प्लेसमेंट्स भी जरूरी है, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है और हमारे जो संस्थापक महोदय हैं उनका भी विचार है कि बच्चों को स्किल्ड बनाकर हम बच्चों को नए नए उद्यम जो है वो शुरू करवाएं। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम उनसे स्टार्टअप खुलवाएं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनकी स्किल्स डेवलप करवा कर उनसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके अच्छे अच्छे कोलेबोरेशन करवाएं। उसी क्रम में हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, हमने स्टार्टअप सेल की स्थापना की, जो बच्चों को आए दिन ये उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए वो रेडी करते हैं। जहां तक बात आती है प्लेसमेंट की, तो बच्चा जो इन तैयारी से बिछड़ जाता है, मतलब कहें तो वो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना वो स्टार्टअप के ऊपर कोई लर्निंग करता है, तो मैं समझूंगा उस बच्चे को तो कम से कम शुरुआत में एक दो साल नौकरी करनी चाहिए। नौकरी का क्या एनवायरमेंट होता है, अपने अपने कलीग्स को कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, फिर वो सब चीजें जो हमारे यूनिवर्सिटीज में उसको फ्री में मिल रही है वो प्लेसमेंट में जाके कंपनीज में वो चीज जब तक नहीं लेगा, जब तक वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो प्लेसमेंट उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमारे यहाँ पर ये स्किल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छा है।
0: सर, आप बात करना चाहेंगे आपकी लीडर फिलोसफी के बारे में।
1: देखिए, मैं सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। जो आपकी दिशा है वो महत्व रखती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो चीज सेकेंडरी है। अगर आपने गलत दिशा चूज कर ली और उस पर स्पीड से भागे जा रहे हैं तो वो दिशा आपको गलत गोल की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को, बच्चों को जो मार्केट में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में एआई का ट्रेंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मार्केट में है, और कुछ नहीं तो क्या क्या चीज मार्केट में चाहिए, बच्चे उस पर जाए। और इंजीनियरिंग में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है एक करियर के लिए, बच्चे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, कम से कम वहां से सीख ले। हम तो सिखा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप सेल में ये सब चीजें सिखाई जाती है, रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर है। उनसे अलग अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस मेहनत के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने अंदर इम्बाइव करनी होगी, और थ्रू आउट लाइफ ये दोनों चीजें तो आपके अंदर रहनी ही चाहिए, अगर आपको आपकी दिशा और दशा दोनों सही है तो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कमाल की जानकारी देने के लिए। एंड अब आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए।
1: देखिए, लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक छोटा सा कोई शॉर्टकट से कोई आप जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। सक्सेस लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना, अपनी कोर वैल्यूज को कंसिस्टेंटली अपने अंदर मेंटेन करना, जो आपकी अच्छी वैल्यूज है उनके साथ में, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करना। अगर नौकरी मिलना आपका टारगेट है तो आप गलत दिशा में हैं। नौकरी लेना बहुत आसान है, पर नौकरी पर बने रहना उसके लिए आपको ताउम्र आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको स्किल एनहांसमेंट करने होंगे, और वो जरूरी भी है। तो मेरा यही मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए है कि अपने आपको हमेशा अग्रसर रखें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आने वाले 5 साल में एक पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है एआई की मदद से, तो क्या हमारी पीढ़ी उसके लिए तैयार है? उसके लिए तैयार होना है तो हमें अपनी सोच को, अपने कार्यस्थल को, अपने पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर ढालना होगा। जो उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियां हैं उसको हमें इम्बाइब करना होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को, उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे, आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसकी हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करेंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज, इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस, दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical-based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माई करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, which is my dream company. आगे जाकर मैं food industries में काम करना चाहती हूँ as a food analyst, ताकि मैं food safety ensure कर सकूँ for a better India. Overall, सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
6: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
0: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे।
1: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

0: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज का ये खास पॉडकास्ट उनके लिए है जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास अतिथि सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम। मैम स्वागत है आपका।
1: पंकज जी थैंक यू और धन्यवाद, आपने मुझे आज इस अवसर पर बुलाया।
0: मैम हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
1: सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी विधि के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है और उत्तर भारत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो BA LLB, LLM, LLM एग्जीक्यूटिव, PG डिप्लोमा, PhD और LLD प्रोग्राम को देता है।
0: मैम अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई बच्चा आकर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है?
1: अगर हम यूजी कोर्स की बात करें दैट इज BA LLB, उसमें 10+2 आपका होना चाहिए और 45% एग्रीगेट होता है। उसमें हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है संस्था का, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश ले सकता है BA LLB में। इसके अलावा PG डिप्लोमा का हमारा कोर्स है। PG डिप्लोमा हम लोग ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ, पेटेंट, IPR इन विषयों पे कराते हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इसमें प्रवेश ले सकता है और इस विषय पर अपने जो भी आप ह्यूमन राइट्स हैं, पेटेंट हैं, उस पर आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
0: मैम कितने टाइम ड्यूरेशन के सभी कोर्सेज हैं, यूजी के भी और पीजी के भी?
1: हमारा जो BA LLB का कोर्स है ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जो हमारा पीजी डिप्लोमा का कोर्स है वो 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे संस्थान में मास्टर्स में LLM है। LLM जो 2 ईयर्स कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है और उसमें हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। और जो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे संस्थान में, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ। इन 4 स्पेशलाइजेशन में विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है और हम लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मास्टर्स में देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स में LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। दोज हु आर प्रोफेशनल, जो लोग जॉब में हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा LLM एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम है। ये 3 वर्षीय प्रोग्राम है।
0: मैम आपने इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताया और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन खोजते हैं, तो क्या हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर भी?
1: हमारा संस्थान डिफरेंट स्कॉलरशिप देता है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप देता है। उसमें एक क्राइटेरिया बना है, 9200 पे आपका यूजी अगर आप करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही वो सारी ट्यूशन फीस पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मास्टर्स में भी यही व्यवस्था है और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप 9200% का एक पूरा बॉक्सेस बने हुए 9200 और 80.9%, तो वहाँ पर बच्चों को सुविधा स्कॉलरशिप की अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप के अलावा भी हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो एलुमिनाई है उनके लिए स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सोनल के लिए स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ जो मार्टियर्स हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी हमारी संस्था जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
0: मैम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो किस तरह का स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है?
1: पंकज जी मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है, हमारा जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है और हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। और हमारा संस्थान कंटिन्यूस बच्चों को जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हुए उनको मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन कराता है, उनको क्लाइंट काउंसलिंग सिखाता है, जजमेंट राइटिंग कराता है, कोर्ट विजिट, जेल विजिट, लोक अदालत विजिट, ये सब कराता है। इसके साथ ही साथ हमारे संस्था में जो एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक हमारा फ्री लीगल एड क्लिनिक है जहां पर बच्चे जो है क्लिनिकल सारे एस्पेक्ट सीखते हैं और फ्री लीगल एजुकेशन, वहां फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दोज हु आर रिक्वायर्ड द फ्री लीगल एड, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, वो हमारे यहाँ आकर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हैं और ये 24/7 हमारे यहाँ चलता है संस्थान में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले, प्रोफेशनलिज्म में एंटर करने से पहले वो सारी विधा सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे डील करना होगा।
0: मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जो भी कोर्सेज आपने बताया यूजी के हैं या पीजी के हैं, तो आगे करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं?
1: पंकज जी विधि के क्षेत्र में जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आप BA LLB का कोर्स करने के बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप डिफरेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो आप जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विधि के क्षेत्र जो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में विधिक जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर बीएलएलबी के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है और आप कुछ भी, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी है आजकल, फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बच्चा बीएलएलबी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब मास्टर्स करता है, एलएलएम करता है, तो एलएलएम करने के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एकेडमिक्स में जा सकता है, वो यूजीसी नेट क्लियर कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, रिसर्च को ऑप्ट कर सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एलएलएम फर्स्ट ईयर करने के बाद, मास्टर्स का पहला साल करने के बाद ही यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर इन लेटर और रिस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं कि 75% अटेंडेंस है, तो वो उसको बच्चा करता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आउटकम हमें मिलता है।
0: मैं वैसे तो हम लगभग सभी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जिन भी बच्चों तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुंच रहा है और आगे जुडिशरी के क्षेत्र में या आगे वकालत के क्षेत्र में अपना करियर जो बच्चे देखते हैं इस वक्त, हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी क्वेरी अभी बच जाती है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो कॉलेज जा सकते हैं, एड्रेस क्या है?
1: हमारा जो प्रमुख संस्थान है ये NH 58 पर एस्टैब्लिश है, आप कभी भी आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
0: तो अभी अभी आपने सुना सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम को, और उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड अब आपको ये चुनना है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे क्या करना है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं और पीजी आपको करना है तो आपको क्या करना है, वो आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम सुनने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
2: जय हिंद, मेरा नाम सृष्टि सिरोही है और मैं बीएलबी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके साथ सुभारती से जुड़े अनुभव साझा करूंगी। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो लगा 12th के बाद क्लास टीचर ने जो सपोर्ट किया, ऐसा सपोर्ट कहाँ ही मिलेगा किसी कॉलेज में, पर यहाँ का मेंटर मेंटी सिस्टम एक स्ट्रेंथ बना और साथ ही ऐसी गाइडेंस दी कि जो आज तक इतना सपोर्ट करती है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ उनसे संपर्क साध लिया जाए तो वे हर मुश्किल हल कर देते हैं। दूसरा, यहाँ की लाइब्रेरी जो हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन और साथ ही जर्नल्स और न्यूज़पेपर और छोटी से बड़ी बुक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। सुभारती के अगर ब्लॉक्स में घूमो या कैंपस को विजिट करो तो देखोगे कर्नल लक्ष्मी सहगल से लेकर झलकारी देवी, जिनके नाम इतिहास में छुपे रह गए, जो सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आंगन में उन्हें जगह दी और साथ ही उनका नाम अमर कर दिया। सुभारती यूनिवर्सिटी के 4 क्लब, कल्चरल, लिटरेरी, इनोवेशन और स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़ी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही सबसे अच्छा, सुभारती के टीचर्स जो हमें हमारे फ्रेंड्स और साथ ही गुरु दोनों प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, सुभारती सिर्फ करियर ही नहीं बनाता, यह एक चरित्र का निर्माण करता है। धन्यवाद।
3: जय हिंद, मैं ओम ठाकुर, विधि संकाय के चतुर्वर्ष का छात्र। जब सुभारती के अंदर मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ तो मुझे अपने 5 साल के जर्नी का वो पहला साल याद आता है। घर से इतनी दूर, मन में हजारों शंकाएं, परंतु यहाँ के माहौल ने उन सभी शंकाओं को क्षण भर में दूर कर दिया। बात अगर एकेडमिक्स की करूँ तो मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी में हाथ जरा तंग थी। ना केवल मैं, मेरे घर वाले भी परेशान थे कि आखिर कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। मगर कॉलेज और टीचर्स का जो सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे अन्य बच्चों को मिला, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अब लैंग्वेज हमारे एकेडमिक्स में बैरियर नहीं रहा। साथ ही मूड कोट एक्सरसाइज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर होते रहते हैं, जिनकी मदद से हम लॉ को ना केवल किताबों में बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट्स और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से सुभारती अवसरों का भंडार है। और यही कारण है कि मेरे जैसा एक छात्र जिसने 12वीं तक कभी माइक भी नहीं पकड़ी थी, वह आज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ना केवल प्रतिभाग कर रहा है बल्कि मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती भी है। और मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो अलग अलग मंचों पर देश और सुभारती का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं अ जर्नी विच वेल बिगन इज ऑलमोस्ट हाफ डन। जिस दिन मैंने सुभारती को चुना, विधि क्षेत्र के इस जर्नी का वह शुरुआत था जिसने मेरे सफर को आधा तय कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का मूल मंत्र जो मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा, वो बचे खुचे मुसीबतों से भी मुझे विजय प्राप्त करवाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्राउड टू बी सुभारतीयन।
0: तो अभी अभी आपने उन छात्रों को सुना जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। बाकी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते एक मैसेज हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक हमारा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है।
1: मैं अब एक केवल यही वाक्य कहना चाहूंगी बच्चों से कि आप अपने करियर पे फोकस करें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने जो भी आपने क्षेत्र चुना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट करें एंड हिट द टारगेट, तभी आप जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये बात आपने माइंड में बिठा लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य आपको सेवाएं देना है। सेवाएं किसको देना है? राष्ट्र को देना है। बिकॉज हम किस पर बिलीव करते हैं? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। विद दीज वर्ड, जय हिंद जय भारत।
0: बिल्कुल बात सही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ, तब तक मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ हमेशा की तरह, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए, और फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही जुड़े रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। जय हिंद जय भारत।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और इस वक्त लाइव आपसे बातें कर रहा हूं। भाई एक वक्त वो भी होता था जब ना मोबाइल फोन इतने स्मार्ट थे, ना सोशल मीडिया था, और उस वक्त भी स्कूल कॉलेजेस होते थे, बेशक कम मात्रा में होते थे, लेकिन जो भी उन्हें अपना पास करके बाहर निकलते थे, अपना ग्रेजुएशन पूरा करके बाहर निकलते थे या स्कूलिंग पूरा करके निकलते थे, तो अपने टीचर्स से, अपने दोस्तों से उनका कनेक्शन टूट जाता था, और मिलने की कोशिश करते थे तो बहुत कम लोग इसमें कामयाब हो पाते थे कि वो अपने अध्यापक से मिल पाए या अपने किसी बिछड़े दोस्त से मिल पाए। एंड फिर जब सोशल मीडिया आया तो सभी लोग जुड़ने शुरू हो गए, और आज भी ये चलन चलता जा रहा है। भाई आपसे हम एक बात ये कहना चाहेंगे, आपसे हमारा कनेक्शन ना टूटे, आप हमारे साथ 24/7 जुड़े रहें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं हमारे आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। अब ये बात मैंने क्यों कही और इतना समझाकर आप तक ये बात क्यों पहुंचाई, क्योंकि आप भी हमारे दोस्त हैं और हम आपसे नहीं चाहते कि हम आपसे बिछड़ें। तो अभी जुड़िए हमारे आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के फेसबुक यानी कि मेटा पेज पर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाएंगे, और आप कभी भी किसी भी समय यहां पर मैसेज कर सकते हैं, अपने सजेशन भेज सकते हैं हमारे शो से रिलेटेड। फिलहाल सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में। आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं। इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती। अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्योनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे

0: पैथोलॉजी लैब्स लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आपसे बिल्कुल लाइव बातें कर रहा हूं। अभी अगर आप अपनी कार में हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे रेडियो को सुन रहे हैं और बाहर से मेरठ में आए हुए हैं, तो अभी क्या है, आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अपनी कार में हमें सुनते जा रहे हैं, लेकिन जब आप मेरठ पार कर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमें नहीं सुन पाएंगे। सो आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप बाहर के हैं, मेरठ में आए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ऐप को इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप मेरठ से बाहर जब जाएंगे तो ऐप के माध्यम से कभी भी कहीं भी हमें सुन पाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी फरमाइश अगर कभी हम तक पहुंची तो ज़रूर हम उसे पूरा करेंगे। इनफैक्ट अभी भी अगर आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाएंगे तो उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो, रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

दफ्तर की थकान और दिन भर की भागदौड़, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और अच्छी नॉलेजेबल बातें सुनने का, वो भी प्यारे गीतों के साथ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

उंगली पर लगने वाली स्याही सिर्फ निशानी नहीं, आपकी ताकत है। शिकायत करने से अच्छा है सही चुनाव करें। हर वोट कीमती है, इसीलिए अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं और वोट करने का मौका मिलने पर जरूर वोट करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: Joker.
1: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं। इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है। इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है, इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए, फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।